प्रजापति महादेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। सबको के जय जय सीताराम।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Sitaram, I'm Alicia, inviting you to join me Monday to Friday, 7 a.m. to 10 a.m. for the program Subah, starting you on an inspirational note and taking you through a musical journey as we keep each other company, only on Radio Jagriti 102.7 FM. Sitaram.

स्वस्ति नहिंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभ्यन्नः पशुभ्यः शुशान्तिर्भवतु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ॐ श्री सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तजन ट्यूशन एवरी वन ऑफ यू जय सीताराम। वेलकम टू आराधना, वेलकम टू रेडियो जागृति 102.7 एफएम स्टीरियो इन योर वीकनिंग। एंड डिवोटीज, दोज ऑफ यू हु आर होल्डिंग हैंड्स विद अस अराउंड द वर्ल्ड वाया अवर वेबसाइट www.jagriti.com, to all of you, Jai Sitaram. Sanatana Sindhu, every Monday morning at this time, we recite our Sandhya mantras. As Hindus, there are certain mantras that must be chanted when we awaken ourselves in the morning, from sleep and from slumber. Bhaktajan, let us recite these mantras together. As we open our eyes this morning, we visualize Bhagavan as Omkar, the chief name of Paramatma, who grants all liberation. Opening our eyelids this morning to a beautiful day, we chant together, Om Bindu Sanyuktam Nityam Dhyayanti Yoginah Kamadam Mokshadam Chaiv Om Karai Namah Om Karai Namah. Next, devotees, we open both of our palms in front of us and visualize at the tip of the fingers

शिवाय। ओम हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी जय हो। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड प्रेयर फॉर मनार आरती। पब लॉग्ड इन प्लीज लाइक टू डे दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ भगवान श्री राम फ्लावर एंड भगवान श्री राम ब्लेस यू एंड योर फैमिली।

रामचंद्र की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री रामायण माता की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सत्य सनात धर्म की जय। सदगुरु के दंड जय जय सीताराम। लो सीख कर भी आराम बैठे आप लोग।

हो कलेश विकार सिया, वर राम चंद्र पद जय, पवन सुत हनुमान पद जय, उमापति महादेव पद जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। ऑल टुगेदर।

0: शिव सर्वज्ञ जान सब कोई.
1: भगवान शिव नोज एवरीथिंग. सो इट मस्ट बी सम डिविनिटी देयर.

गणपति का पूजन घर घर में होता है। उनके अद्भुत स्वरूप के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। गणपति का स्वरूप हाथी जैसा क्यों है, इसकी एक कथा यह भी है।

चेतरे बौज वरतारे वरतमाले श्रमदा देशे अमुक ग्रामे एस्परांज विलेज ग्रामे यथा नाम संवत्सरे अमुकाय दक्षिणाय नमुक मास भद्रपद भद्रपद माक्ष शुक्ल पक्ष चतुर्

0: गोत्राणां यजमानस्य तिकिनीं ज्ञात ज्ञात गाय वाङ्गमन कृतः सकल पाप क्षयपूर्वक सकल मोनरो प्राप्चारतम् श्री मृन्मयी गणेश मुरटु प्राण प्रतिष्ठ सहित पूजनम संकल्पम अहम करिक्षह समस्त कामनाट सिद्ध्यार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष अहम करिक्षह प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय।
1: ओम श्री कृष्ण अर्पणम नमस्ते। ओम गम गणपतये नमः।
2: नमस्कार
1: भगवान श्री गणेश।

इदं बुद्धस तेन अनेन सफलवातिर भवे जर्मने जर्मने हामी अफसम वचन अन जस्ट वचन कुसम वचन अन तपि पार्दी फुटि सुपारी क्लो सर्वतेर्थ सुभायुतम सुगदि निर्मलम जलम आश्रमया देवं नेतां पुरुषोत्तमं अन होली कोकोनट कोकोनट चाचल सेंदू हरडी बोले तो भगवान गणेश इदम पलम भगवान accept this offering, this special offering of ours. May we have your blessings. Om Yaha Falaje Yaha Fala Apushpa Yaha Pushpa Brihaspati Prasut

श्री उमापति महादेव की जय, महाशक्ति देव की जय, कौनपुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पूजा, वेलकमिंग भगवान गणेश, प्लेसिंग हिम ऑन द ऑल्टर, एंड दैट डर्ट व्हिच वाज टेकन फ्रॉम द वाटर हैज बीन प्यूरिफाइड थ्रू द पावर ऑफ मंत्रस, एंड सो सीटेड ऑन द ऑल्टर इज द माइटी वन हिमसेल्फ, जो विघ्न हरण करते हैं, he who removes all obstacles, he is installed on the altar. So understand now, it is that invisible form who has come visible. Agnahi sagnahi nahi kachubina. There is no difference between nirakar or sakar. It is the same one Lord who is Ganapati. So after beautiful mantras, after invocation, we will now join together in katha this evening. So let us all bow our heads and pray as we meditate on the glorious form of Sri Ganapati Bhagavan, as we join in katha. Bole Ganesh Bhagavan ki jai. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha.

शिव नंदन बुद्धि बढ़े देहि मोर। जो एक दंत गजमुख श्री गणेश के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूँ गणपति, हे शिव पुत्र गणेश मुझे पर कृपा करो जिससे मेरे बुद्धि को विकार हो। श्री गणपति नमः। I bow to the Lord, to the lotus feet of Sri Ekadanta, Sri Ganesh, the one-tusk one, Gajamukha, the elephant-headed one, Sri Ganesh, with folded hands, O son of Lord Shiva and Parvati, Ganeshji, please shower your grace upon me that my intellect may develop. To you, Ganesh, we offer salutations again and again. Kamsa Bolo Sri Ganesh Bhagawan Ki Jai.

श्री उमापति महादेव की जय। जय भाद्रपद चतुर्थी तिथि। सो टुडे इज कॉल्ड इन हिंदी भाद्रपद एंड ऑफ कोर्स चतुर्थी तिथि मींस द फोर्थ तिथि। सो व्हाट हैपेंस in Bhadrapad, the fourth day of Krishna Paksha, Sri Ganesha's worship. As we are doing today, Lord Ganesha's worship.